0: लोक गयो पर लोक गवायो, बास की ओ बखियान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पिछा को शीस निवायो, को बतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो।
1: We now offer you a kirtan called Nad Samilio Re.

0: को।
1: इंद्रजीत, पुट एन एंड टू दिस फूलिश मंकी। स्लेट, जय श्री राम।
2: लॉर्ड, आई हैव कम विद एन अर्नेस्ट अपील, फॉर टुनाइट इज अ डिसाइसिव नाइट, द डेस्टिनी ऑफ लंका।